दाड़ी तगना पैरी तगना थी तगना जेवा तगना खी वे तगा पे वत वड़ता गे अवरे अवरा कत्ते।

चौके उपर किसे ना जाना, देके चौका कड्डी कार उपर बैठे कुड़ियार, मत पिटै वे मत पिटै न साडा फिटै, तन फिटै फेर करीन मंड जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सुच होवे तां सच पाई पौड़ी चिते अंदर।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गुण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत छुटत प्रवाह अमेय अमरा पद अमृत सरोवर साध परेया ते पी वह संत करहे मन मज्जन पुब जिन हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पाद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे काब काल्य ठकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे गुर सिख हो गुर सिख है पीर पीर हो कोई शब्द सुरत चेला गुरु परमेश्वर सोई दर्शन दिष्ट ध्यान तार गुर मूरत होई शब्द सुरत कर कीर्तन सत संग वेलोई वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हौ मैं कोई आप गवाए आप है गुण गुणी परोई विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास रखहो सरनाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण

होवै सिफत खसमदी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पाते सा हो सिर साहद जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा सजन सच्चा पाते सा हो सिर साहद जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोहे महला चौथा हर हर नाम भजो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलघा

नाम आत पिरघा। मैं मन तन अर पत्तरयो गोरे आगै, सिर वेच लियो मोल महंगा।

रहे बिन नावे पकड़ खड़े सब कल घाम। धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछुताने हाथ फल घाम। हार राख राख जान किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रतिपल घाम।

दासन दास दासन दास तुद आगे बिन वतास लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया

जगत चंगियाईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते हाया गए मसकत कार नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते हाया गए मसकत कार नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी वटी वड्डा पार ते ना मर्तबा रंग परंग ने अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जानला सब कुछ तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद विधा।

जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वडे मेरे साहेबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोय न जाने तेरा केता केवड चीरा रहाओ। साव सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। साव सत साव तप साव चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तोद विण सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफति भरे तेरे भंडार। जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवार नहार। आसा महला पहला, आखा जीवां विसर मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लाग भूख। उत भूख खाए चलिए है दुख, सो क्यों विसर मेरी माए। साचा साहेब साचे नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वड्डा न होवै घाट न जाए, ना उह मरे ना होवै सोग। देंदा रहे ना चुकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए। ना को होआ ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जिन दिन कर कै कीती रात, खासम बसार है ते कम जात। नानक नावै बाज सनात, राग गूजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको नाम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृपता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाए। ताका रिजक आग कर धरया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की धरया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करया। ओडे ओडे आवै सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह

तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे जोज विडान। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबान। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान होई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई। जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सब नीत आया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाणहि सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहल। तित सरवरड़ भई ले निवासा पाणी पावक तिन्ह किया। पंख जो मुह पग नहीं चल हम देखा तह डूबियले। मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाहीं विसरिया।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰ ਕਿਤੈ ਨਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। ताब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवे तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सवे करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब वैरुण को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतर। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो वध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतार, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेद। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंग भयो राव कही भूप। आंडज जीरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दोष्ट जीते उठवाते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हार हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सके न कोई।
एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उवार जिन

दोष्ट दोख ते लिहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बह भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब को जाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वड्याइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनखो से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर।

गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परोसा दान दान दान सिरदान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल तरम का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारे गुर धम्मां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार

बचनी तोर मोर मन माने, जान को पूरन दीजे। हों बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो

चेर पयो दर्शन देखे, फिरत फिरत प्रव आया परया तो शरणाय। नानक की प्रव बेनती अपनी भगती लाए। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ।

नानक जेन काल राखी मेरी दर्शन प्यासी दिन सरात चित बहु अन दिन नीत।

0: पौड़े वड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब कि तेरे वास तेरा घर पला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर है माण माता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर दिस है जग कहता नानक दासन दा तुद आ गए बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत चंगियां या बुरियां।

हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिकै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुध तारा स्यों प्रीत लगाई। इकोत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख। ओ सिफत खसम वीन उर अरसह कुरसह।

सजन सचा पात साहो सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही सब नांद आवे सजन सचा पात साहो सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही सबना दावेसाहो सतनाम श्री वाह

हम प्रेम बदन तुम बाद अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराध। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बाद अपने छूटन को जतन करहो, हम छूटे तुम आराध। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। रहाओ मीन पकड़ फांके और काटे, रांद कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तो ना बिसरेओ पानी। आपन बाप नाहीं किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा। कह रविदास भगत एक बाडी,

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो। सर्व सुख हर

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद दंडात वंदन अनक।

राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडपा कूड़ माड़ी कूड़ बैसम कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैनल कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पा कूड़ मिया कूड़ बीबी खा पोए खा कूड़ कूड़े ने लगा।

सब को पूरा आपे होवे। पट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए, ता नानक तो लिया जापे महला पहला। वधी सो वध नानका सच्चा वेखै सो, सबनी छाला मारियां करैता करे सो। अगे जात ना जोर है अगे जी नवे, जिनकी लेखै पत पवै चंगे से के। औड़ी तोरे कर्म जिन

पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार तो मी साधना मारी है जे हा कल घालना ते वेखो नौ पचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हारी है पड़िया ते उमिया विचार गए विचारी है मोह चलै सो अगै मारी है मोह चलै सो

0: कवन विद उस्तद करिए, सिद्ध साधिक ते तीस कोर तीर कीम ना परिये, ब्रह्मादिक सनका से गुण अंत न पाए, अगो ग्योनी जाए पूर सर्व रेओ समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हर गुण नानक जिन पर से ओ ते इत उत सदा मुकते।
1: काची देह मो फुन बांदी, सठ कठोर कुचीलक ज्ञानी, तावत

0: आप नारायण कलातार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जय कहते भरपूर शब्द दीपक दे पायो जय सिख संग रहो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अब तरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो।
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख शरण परहे ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख भगत पाए भरपूर हृदय उच्च रह कर तार गुर गौ हर दरियाओ पलक डुबंत तारे नानक कुल निमल अवतरयो गुण कर तारे उच्च रह गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर।

सार आप सार की सार न जान है, फिर कीच बुढ़ा ही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर ना वह काही जियो। निर्मल नाम जपहु साध गुरमुख, अंतर की गात ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्याग हो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यो पावै त्यो राखहु हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्याग हो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यो पावै त्यो राखहु हर जियो,

0: नानक में शरीर का एक राति कृतवा जुग जुग फेर उठाई ज्ञानी बुझेता सत जुग रासन तो का कर्म गिरतवा त्रै तेरा जते का जोर गिरतवा द्वापे तपे का सत गे रतवा हर जुग का तक का कूड़ गिरतवा महला पहला
1: श्याम कहे से तंबर स्वामी सच में ऐसे साच रहे सब कुछ असमावेरे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नाय लय प्राश्त जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जहादुम भया पार जात गोपी लाया बिंद्रा बन में रंग किया काल में वेद थर्मन हुआ नाव खदा ये लो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद सचया पढ़े गुण तीन चार विचार पौ भगत करनी सदा ओ नानक मोखन तर पाए पौड़ी सतगुर विटो हरिया जित मिल खसम संभालिया जिन कर देश गंदिया इन्हीं ने तरी जगत निहालिया खसम छोड़ दी जगत डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है पोता विरलेखने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार पार
0: पौड़ी सतगुरु बिटो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जंदी है इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया।